0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड मॉर्निंग, 7:10।
2: Bollywood.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम, लेकिन ह्यूमिडिटी रियली रियली हाई। स्टार्टेड विद 80% ह्यूमिडिटी ऑन दिस 5th ऑफ अक्टूबर। 31 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, विंड्स ब्लोइंग एट 13 किलोमीटर्स पर आवर, हाईज ऑफ 34, लोज ऑफ 31 डिग्रीज।
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: It's 7:39 on the clock. It's the 5th of October, Monday ki subah. Yeah, talking about Deva, right here, like, you know, close to Deva on planet Earth are our teachers. Today is the International Teachers Day.
1: You taught me wheels on the bus go round and round, round and round.
0: I love this song.
1: You taught me A, B, C, D, E,
0: It's
1: F,
0: time to thank
1: G.
0: your teachers, and I've got Zulfi, our favorite teacher on the show with me on the phone line. Zulfi, good morning. Happy Teachers Day. Aapko, how does a teacher good feel time. On Teachers Day? Do you feel like there's a halo on your head right now, or kaisa lag raha hai is waqt?
2: Same, yeah. It's like every other day, unless we... स्टूडेंट गिफ्ट लाके दे दे
0: क्या चांसेस हैं आज के ऐसा हो जुल्फी बताइए
2: हाँ कुछ ऐसा अच्छा गिफ्ट मिलना चाहिए कोई तो स्टूडेंट अप्रिशिएट करे आज के दिन
0: यूजुअली होता है ऐसा
2: आजकल
0: कैसे होता है सेलिब्रेशन बिकॉज यू नो व्हेन आई वाज इन स्कूल सो 11th ग्रेड वी हैड टू ड्रेस अप एज टीचर्स एंड गो एंड टीच द प्राइमरी सेक्शंस सो यू नो लड़कियां साड़ी पहनती थी हम लोग जो है ब्लेजर वेजर पहनने का हमको मौका मिलता था तो जाके हम लोग ना फिर चौक मारते थे आजकल क्या होता है
2: आजकल चौक होती नहीं है
0: एग्जैक्टली
2: आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी आ गई है तो मतलब इवन हार्डली वी यूज व्हाइट बोर्ड्स एज वेल क्योंकि वो तो सब
0: व्हाइट बोर्ड पे भी तो होता है वो जो मार्कर वगैरह वो भी नहीं होता क्या आजकल तो कैसे पढ़ाते हैं
2: मार्कर और डस्टर तो होता है लेकिन मार नहीं सकते
0: ऑब्वियसली
2: हमारे दौर में था वो हमारे दौर में था हमारे टीचरों के निशाने अच्छे थे
0: नहीं नहीं वो बच्चे मारते थे फिर हम लोग रिप्लाई में मारते थे जस्ट टू काइंड ऑफ सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट बट हाउ डज इट हैपन आजकल इज दैट सेलिब्रेशन स्टिल ऑन और वो प्रथा जो थी इज गॉन
2: I don't think so. Okay, वो yeah. इतना है कि वो dress up a teacher, but हाँ, they do, we do organize things like that. कि usually like a student would lead a class and things like that. So वो रहता है.
0: And छुट्टी होती थी teachers की उस दिन पे, and then used to there used to be a party in the staff room.
2: कोई छुट्टी नहीं है सर.
0: कुछ नहीं.
2: कुछ छुट्टी नहीं.
0: If I were to ask you, Zulfi, one message to all the students out there from a teacher here in the UAE, क्या होगा वो message बताओ यार.
2: सर एक सबसे आप भी थोड़ी देर पहले आप रेडियो पर जो डिस्कस कर रहे थे वही बात मैं भी दोहराऊंगा अपने बेटे को भी यही बात बोलता हूँ वो भी आके हर चीज बोलता है एवरीथिंग इज एआई एवरीथिंग इज एआई तो जिसने बनाया उसको भी पढ़ना पड़ा था और आपको भी पढ़ना है और टीचर्स के बगैर आप नहीं कर सकते टीचर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द सोसाइटी टीचर्स के बगैर यू कांट रन अ सोसाइटी
0: And like I was saying, it's not just about teaching the subject. It's also about how to use that subject. सिर्फ knowledge तो आपको कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन उस knowledge को use कैसे करना? जैसे कि you know superhero की दुनिया में ना आपको power तो मिल जाएगी, लेकिन उस power को use करना कौन सिखाएगा? Teacher सिखाएगा. Wow यार, क्या हमने तो आपको Marvel का how are you feeling right now? Do you feel like you have a cape या कुछ? क्या बात है यार बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वंडरफुल वर्क दैट यू डू यू नो टीचर्स का काम इतना मेहनत वाला होता है आई थिंक डॉक्टर्स नर्सेज टीचर्स ऑल ऑफ यू पीपल यू नो आई जस्ट कांट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दैट यू डू कितना पेशेंस चाहिए होता है यार बच्चों के साथ डील करना है हाउ डू यू डू दैट डू यू काइंड ऑफ डू सम अनुलोम विलोम या कैसे प्रैक्टिस करते हो यार बताओ
2: हो जाता है खुद ही थोड़े टाइम में आदत बन जाती है फिर वो
0: गुस्सा आता तो होगा उसको कैसे कैसे कंट्रोल करते
2: हैं बहुत बहुत आता है सिर्फ खाली गुस्सा नहीं आता बहुत आता है बट यू जस्ट ट्राई एंड काम डाउन यू हैव टू व्हाट आई हैव लर्नड इन माय करियर इज के यू हैव टू बी लाइक द ओनली वे टू गेट टू द स्टूडेंट इज यू हैव टू बी द स्टूडेंट
0: गेट दैट
2: वेवलेंथ गेट टू नो देयर ब्रेन एंड देन या देन इट बिकम्स इजी देन इट बिकम्स वेरी इजी Once they you build that relationship, then वो उनको पढ़ाना भी आसान होता है फिर वो आपकी सुनते भी हैं फिर आपकी समझते भी हैं Once you try to create a, के हाँ नहीं I'm a superior being, then you वो कभी भी नहीं they would never learn.
0: Right.
2: I
0: can just imagine कि फिर वो जो but इतनी मेहनत करने के बाद you try so hard to get to their level, but उसके बाद once you do and that वो जो आपको वापस मिलता होगा as a teacher, you know, to see your student succeed or kind of achieve what they want in life would be like next level, right?
2: Biggest reward.
0: है ना? So it's like the, you're almost a parent to around 60-70 people at the same time.
2: Yes,
0: so jitni mehnat lagti utna rewarding bhi hota hai yaar. So I guess
2: usme bhi ye sabse bada hi hota hai ki jab kuch like aapne kisi ko padhaya aur fir wo like because I teach usually year 12 and 13 kids to
0: right
2: once they are done with year 13 they go to universities and stuff. Wo fir jab 2-4 saal ke baad aake kabhi koi milta hai aur wo jab wo ye express karta hai na ki how they did it
0: yeah
2: what yeah, that feeling is amazing. Wo fir aap us तो आप किसी भी तरह से जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते.
0: एंड दैट वुड कीप यू गोइंग राइट.
2: ये बोले कि हाँ
0: दैट वुड कीप यू गोइंग दैट होल इमोशन राइट. दैट्स द फ्यूल दैट्स द विंड बीनीथ योर विंग्स राइट. अमेजिंग यार जुल्फी थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी. प्लेजर एज ऑलवेज. एंड आप सबको ना सिर्फ आपको सारे टीचर्स को यहाँ यूएई में एंड एनी वेयर दैट यू आर लिसनिंग टू मी हैप्पी हैप्पी इंटरनेशनल टीचर्स डे. कीप डूइंग ऑल द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग.
2: Thank you, sir. Thank you.
0: That is Zulfi, हमारे teacher on the phone line. And in case you're a teacher heading to school, heading to university, let me know how you're feeling. Give me a call, 800-1062 per.
1: Beat 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 8:07।
1: Bollywood.

0: पति पत्नी और वो दोस्त है रूप दी और रानी रानी ऑन बिग 106.2 एंड वो दो की जब बात की जाएगी इन फुटबॉल इट ऑलवेज बी मेसी एंड रोनाल्डो
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
0: बट व्हाट शार्प कंट्रास्ट राइट व्हेन इट कम्स टू रिटायरिंग फ्रॉम देयर नेशनल टीम्स एक तरफ जहां पे मेसी को अब बस कल टुमारो इज व्हेन दैट मैसिव गेम द लास्ट टाइम दैट यू गोना बी सीइंग मेसी इन अर्जेंटीनियन कलर्स एंड सोल्ड आउट इन 4 मिनट्स पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाउ इट्स अ नेशनल हॉलिडे इन अर्जेंटीना वहीं दूसरी तरफ रोनाल्डो कंप्लीटली अब्रप्ट टोटली ऑपोजिट वन फाइन डे आफ्टर वन गेम प्लेइंग फॉर पोर्चुगल सेड के नहीं यार बस दैट्स इट आज के बाद आप मेरे को इस ड्रेसिंग रूम में पोर्चुगल के ड्रेसिंग रूम में नहीं देखोगे आग बबूला अबाउट सम पर्टिकुलर थिंग दैट हैपेंड एंड नाउ ऑल दैट यूएफए यू नो नेशंस लीग या व्हाटएवर दैट टूर्नामेंट इज हैपनिंग वहां पर पोर्चुगल इज डूइंग वेरी वेल बट without CR7 so sharp contrast but in the world of Lionel Messi who's not a Messi fan yeah matlab jitne fan India mein Messi ke hain I think far outnumbers Ronaldo fans right but Lionel Messi is getting his own animated TV show on Disney Plus yeah has there ever been a game on a famous sports star that has done well I'm very doubtful lekin this is about a 12 year old messi 12 saal ka messi hai jo ki ek alternative reality ar ki duniya mein trap ho jata hai with giants and robots and the challenges that ye 12 saal ka messi must compete in high stakes soccer challenges to escape so yeah it's one of those fantasy football kind of worlds out there and guess what it's not as though messi is not connected with the show in any way and he's just a character he's not just a character he's also a producer of the show himself and the show ka naam hai messi and the giants and it starts streaming 2027 summer yani ki agle saal summer mein ye aane wala hai produced by messi about messi an entire show about lionel messi would you actually watch it इस बात पे एक पोल सवाल तो बनता है ऑन आवर इंस्टा पेज 106.2 बिग एफएम वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दिस फैंटेसी फुटबॉल वर्जन ऑफ लियोनेल मेसी 12 साल का मेसी दिस शो दैट्स कमिंग आउट ऑन डिज्नी प्लस दिस सॉन्ग्स कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल राइट हियर ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड
1: बिग 106.2

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: पास, आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ए मामो
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: इसे जस्ट मी, आपको भी लगता है कि यार जितने बार क्रिकेट के रूल्स चेंज होते हैं और किसी भी स्पोर्ट में करना पड़ेगा रिसर्च इस पे, हैज इज देयर एनी अदर स्पोर्ट दैट चेंजेस इट्स रूल्स एज फ्रीक्वेंटली एज क्रिकेट?
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: मतलब लेटेस्ट रूल चेंजेस जो आईसीसी ने इंट्रोड्यूस किए हैं उसको पढ़ने में पिछला कुछ 10-12 मिनट मेरे लाइफ का निकल गया. इट्स दैट कॉम्प्रिहेंसिव. ऑलराइट, एंड 1st of October से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है. एंड व्हाट आर दीज न्यू रूल्स? सबसे पहले टाइम वेस्टिंग पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती दिखाने वाले हैं आईसीसी. सो यू गेट अ वार्निंग, देन यू गेट अ फाइनल वार्निंग. अगर फिर भी यू फाउंड वेस्टिंग टाइम, 5 पेनल्टी रन्स फ्रॉम द थर्ड ऑफेंस यू विल बी चार्ज्ड. रिपीट ऑफेंसेस यानी कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट का एक्शन भी. देन ओवरथ्रो पे कुछ रूल्स आ गए हैं. ओनली अ थ्रो एम्ड एट द स्टम्प्स. अगर आपने स्टम्प्स पे एम किया एंड देन यू नो देर आर सम एक्स्ट्रा रन्स, दैट इज ओनली दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड एज एन ओवरथ्रो. मिस फील्ड, फंबल्स, ये सब ओवरथ्रो नहीं होता. ऑल्सो अ बॉल कैन बी कॉल्ड फाइनली सेटल्ड इवन व्हेन इट इज नॉट हेल्ड बाय अ बॉलर और अ विकेट कीपर. अभी तक ये था ना कि जब बॉलर ने या विकेट कीपर ने बॉल को अपने हाथों में ले लिया तभी इट इज कॉल्ड फाइनली सेटल्ड, बट नाउ दैट इज नॉट द केस. इट इज अप टू द अंपायर. रन आउट्स स्टंपिंग के लिए फील्डर मस्ट हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बॉल. साथ में देर आर सम न्यू रूल्स एज फार एज द बॉल का साइज एंड वेट स्पेसिफिकेशंस आर कंसर्न्ड, एंड इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर मेन, वुमेन एंड जूनियर क्रिकेट. पिंक बॉल इज गोइंग टू बी अलाउड इन अ ट्रायल बेसिस इन डे टाइम टेस्ट ऑल्सो. वाई I don't know, but ये सब होने वाला है. So don't be surprised if it happens. Then both teams must agree to use the pink ball before the test, and then the decision once they've made it cannot be changed later on. Final over अगर unfinished है, beach over में कुछ हो गया, then the remaining balls can be bowled the same day if conditions allow. कभी कभी होता है ना कि बारिश हो गई, you know, 3 balls of the over has been bowled, and then the umpire says कि नहीं भाई 3 खत्म तो करना पड़ेगा over. नहीं, ऐसा नहीं है. 0.3 पर भी खत्म हो सकता है वो ओवर. यू कैन गो बैक एंड देन बोल द नेक्स्ट 3, एंड देन नाइट वॉचमैन कैन कम इन विद ओनली अ फ्यू बॉल्स लेफ्ट. दैट इज ऑल्सो अ चेंज. सम ऑफ द रूल्स आई डिडंट नो कि ऐसा नहीं होता है. सो इट्स ऑल क्वाइट अमेजिंग. सो T20 की इनिंग्स ब्रेक फिक्स्ड एट 15 मिनट्स. नाउ दैट इज वन बिग चेंज आउट देयर. ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके यू नो एडवर्टाइजर्स हैं, जितने भी एड ब्रेक इतना लंबा हुआ उतना आपका ब्रेक हो गया. आई मीन ऐसा नहीं है भाई, 15 मिनट मैक्स हो सकता है, एंड वी कैन बी कट डाउन टू 10 इफ यू नो टाइम हैज बीन लॉस्ट. हेड कोच, स्टाफ मेंबर्स, दे कैन एंटर द फील्ड ड्यूरिंग ड्रिंक्स. या दे कैन एंटर द फील्ड ड्यूरिंग ड्रिंक्स. लेग साइड का वाइड का ट्रायल इज नाउ परमानेंट इन ODIs एंड T20s. एंड जो बैटर का लेग पोजिशन है एट बॉल रिलीज, that determines the wide even if they move later, right? When the ball is being delivered, jo aapka jo leg position hai at that point us pe depend karega ki ball wide hai ki nahi, not ki aapne baad mein kya movement kar li. And then also bahut sare limited over changes were already used in the women's cricket. So yeah, it is all happening in the world of cricket. Yaar itne sare changes ek ek karke laya karo yaar, thok ke bhav mein nahi. But yeah, ek ek karke 2 tickets aapke paas jeetne ka mauka coming up in the big Bollywood quiz right here on big 106.2.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
1: नाम है सिड. सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: ओह द डे मार्केट्स .ae Tbilisi, Georgia, from just 2,000 dirhams, with flights, hotel, and transfers included. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
4: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetor T2, T1, and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters. The Big Breakfast brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:08।
1: बॉलीवुड

0: It is the 5th of October. Today is the International Teachers Day. And today is the 8th birthday of a Bollywood film jisne teach kiya, sikhaya baaki filmon ko Bollywood mein ki kaise ek badhiya suspense thriller banate hain.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: To open the movie tickets up for grabs in the Big Bollywood quiz, agar aapne bata diya ki kaun si film ki aaj 8th anniversary hai, it released exactly dot on this day, 5th of October, back in 2018. Now, like I said, it is celebrated as one of Bollywood's finest suspense films. And iske jo lead star inka naam bata diya, to phir wo kaafi giveaway ho jayega. So, to make his performance more authentic, okay, here's a clue for you. He wore special, custom-made lenses inhone pehne the from London, and these lenses actually improved his performance by 80%. Okay, now I'm not going to tell you why, what was so special about these lenses, lekin aankhon ka mamla ye wo, and talking about aankhen, is film ka sabse popular gana. अगर आप पहचान गए फिल्म कौन सी है, देन सेंड मी योर आंसर्स व्हाट्सएप एट 0543091062. द लीड इन दिस फिल्म एक्चुअली हैड टू प्ले द पियानो एंड कोई बॉडी डबल यूज नहीं किया. 2 months की ट्रेनिंग इन LA द लीडिंग पियानिस्ट अक्षय वर्मा के साथ इन्होंने प्रैक्टिस किया, एंड देन ही इंसिस्टेड ऑन प्लेइंग द पियानो हिमसेल्फ. एंड देन देयर्स तब्बू इन दिस फिल्म जिनका नाम सिमी होता है, एंड इट्स एक्चुअली एन ओमार्ज टू सिमी गरेवाल जिन्होंने एक नेगेटिव रोल किया था 1980s के क्लासिक थ्रिलर कर्ज में. सो या इट इज एक्चुअली हाउ अ रियली गुड बॉलीवुड सस्पेंस फिल्म शुड बी. तो कौन सी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो क्लूज मैंने आपको दिए ये कौन सी फिल्म के हैं, इफ यू हैव फिगर इट आउट सेंड मी द करेक्ट आंसर स्पेस योर नेम टू 054. आपको व्हाट्सएप करना है 0543091062 पर टू विन 2 ओपन मूवी टिकट्स. 106.2

0: पे अभी भी ट्रैफिक है राइट आउटसाइड मदीना मॉल एंड दैट इज ऑल्सो हेडिंग साउथ एंड रिबाद स्ट्रीट पे सडनली देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक बिल्डिंग अप एंड दिस इज टेकिंग दैट एग्जिट फ्रॉम सिटी सेंटर मिर्दिफ गोइंग टुवर्ड्स फेस्टिवल सिटी इन दुबई. इसके अलावा यू विल फाइंड 75 पे यूजुअल ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शंस ईस्ट एंड वेस्ट राइट आउटसाइड दुबई फ्रेम. देन देयर इज 71 गोइंग टुवर्ड्स दुबई मॉल. यू विल फाइंड अ बिट ऑफ वेस्ट बाउंड ट्रैफिक ऑल्सो एट मैदान स्ट्रीट. And this is going towards E11 from 44. Speaking of which, you'll find a bit of congestion at Alkoos 4th and then going towards Business Bay from D3. Iske alawa, aaj Umsikim Street par bhi traffic build-up hai and Hessa Street going towards 44, you'll find 4 se 5 minute ki der.
1: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.
3: Paida toh main bhi sharif hua tha. शराफत से अपनी कभी नहीं बना. जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 10:09
1: 6.2 The Beat of Bollywood

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now. Big 106.2. That's my song.

0: देखे भी या करे स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
1: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood. Pichak dum, dum.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: हाय रितुल।
3: हेलो आनी।
2: आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन, अ जीके का क्वेश्चन, नॉट द जनरल नॉलेज बट द जर्मन नॉलेज। लेट्स सी आप वो आंसर करते हो।
3: माय जीके इज स्ट्रांग, जनरल नॉलेज इज स्ट्रांग, जर्मन नॉलेज। या लेट्स सी,
2: व्हिच फेमस ऑटम फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन म्यूनिख एवरी ईयर विद फूड, म्यूजिक एंड फन। योर ऑप्शंस आर ए ऑक्टोबर फेस्ट, बी स्प्रिंग फेस्ट, सी विंटर गाला।
3: ऑक्टोबर फेस्ट।
2: पक्का गयो?
3: Yep, yep.
2: Attend भी किया?
3: No, I have not attended. I have friends from Munich who sends me pictures and videos. So yeah, I want to go, but I haven't been yet.
2: तो अगर जाओगे जर्मनी, फिर दोस्तों को ही मिलने जाओगे बस?
3: अगर म्यूनिख जाएगा तो है इधर।
2: Oktoberfest is the correct answer. You are one step closer to big check into Germany.
3: Thank you. Thanks a lot.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800-ALFRED. Alfred simplifies money.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ। और दोपहर तक भी आपकी फिफ्थ कॉफी चल रही है, तो जो आपको सर्व कर रहे हैं ना कॉफी, उनको बोलो
3: तो समझो ना मेरे दिल की इल्तिजा।
2: उनको 10 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे समझाओ कि आज ये मंडे है यार, इसलिए ये हालत चल रही है। एंड वी नीड सॉन्ग्स लाइक भाई, ये बात तो है, सॉन्ग सुन के ना एनर्जी जो आ जाती है। वेल, दृश्यम 3 देखी मैंने दिस वीकेंड, पार्ट 1 पार्ट 2 से बेटर है ये कंक्लूजन या नहीं, गोना टॉक अबाउट दैट। लेकिन अजय देवगन बीइंग अजय देवगन, वर्थ इट तो है यार एक बार देखना। पर फुल रिव्यू कमिंग अप योर वे ओनली ऑन बिग 106.2। कीप इट लॉक्ड।

0: Now lease a brand new SUV from Jetord and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड द लास्ट वीकेंड रिलीज हुई थी फिल्म दृश्यम 3 द कंक्लूजन. एंड पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देखा है यार, हमें पूरी पूरी कहानी पता थी. लेकिन इस बार विजय सलगांवकर कैसे बच के निकलता है या निकलता भी है या नहीं, ये मैं स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ. बट द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म अजय देवगन हैड लीस्ट डायलॉग, सिर्फ आंखों का खेल था भाई. बट जो सेकेंड पार्ट क्लाइमेक्स तक आते आते उनके डायलॉग निकले हैं, फिर तो हम सिर्फ वही सुनने बैठे थे. वेल दिस टाइम दृश्यम 3 अगर आप मुझसे पूछो कि पार्ट 1 पार्ट 2 से बेटर है, वर्थ इट है कि नहीं, आई डिडंट फाइंड कि वो पार्ट 1 या पार्ट 2 से बेटर है, लेकिन वर्थ 100%. इट्स अ फैमिली मूवी. बहुत दिमाग नहीं लगेगा आपका इस बार द कंक्लूजन में, आप खुद ही प्रेडिक्ट कर लोगे प्लॉट, क्योंकि हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिहर्सल इतनी हो रखी है. रिहर्सल से मुझे याद आया बहुत ही मस्त डायलॉग है एक दृश्यम 3 का, चल रहा है ट्रेंड पर, मैं यहाँ नहीं बता सकती लेकिन आपको पता लग गया है, जो सोता है वही रोता है. Someone has watched the दृश्यम 3 movie, उनको पता है किस डायलॉग की बात हो रही है. We have got another meme template from दृश्यम 3. 100% worth to watch this film in theaters with your family. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, and today is October 5th, which marks World Teachers Day. आज Teachers Day, of course, हम अभी बोल पा रहे हैं पढ़े लिखे कहलाए जाते हैं because of the teachers, क्योंकि हमें डिग्री मिली है. डिग्री भी उन्हीं की वजह से मिली है, लेकिन बहुत ऐसी और चीजें हैं जो हम बाकी लोगों से सीखते हैं, सब्जेक्ट्स से सीखते हैं. फॉर मी इट हैज टू बी फिल्म. मैंने फिल्म से बहुत सीखा है. बॉलीवुड यार, प्यार करना. और वैसा वाला फिल्मों वाला कब होता है भाई, कब आता है? सीख सिखा के बैठी हूँ, अब आ जाए तो पता नहीं. यू टेल मी कॉल करके 800-1062 पर कि आपके लिए ऐसी कौन सी एक फिल्म है विच टर्न आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में आपका POV बदल के बैठ गई. थ्री इडियट्स ऑफकोर्स बहुत लोगों की होगी ये फिल्म, एंड मेरे लिए भी वो एक उनमें से एक है. 800-1062 इज द नंबर. कोई एक ऐसी फिल्म जिसने आपको बहुत सिखाया हो. 800-1062 इज द टोल फ्री नंबर. कॉल मी हियर एंड कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: शाम ये राजो
1: छाने नहीं रे बाबा आपते बाबू राव गणपत राव आपते बोल 106.2 द बी

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: Bollywood.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. And now Aditya Dhar and Yami Gautam Dhar have decided कि उन्होंने success देख ली अपनी life में धुरंधर part 1, part 2 के बाद. And now they are shifting to Himachal Pradesh. भाई होता है यार, हर किसी का रिटायरमेंट प्लान होता है कि मैं रिटायर होकर बस इस सिटी में जाऊंगा या पहाड़ों में जाके कैफे खोल लूंगा. बट हिमाचल प्रदेश, पहाड़, कैफे, नेक्स्ट फिल्म मुझे समझ लग रही है. ये नेक्स्ट फिल्म जो है ना, ये पहाड़ों में कैफे पे बनने वाली है, लग रहा है ऐसा. देखो यार, जहाँ मर्जी रहो, लेकिन ये ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में बनानी ये मत छोड़ना. बाकी हम सब बढ़िया. यू टेल मी कॉल करके 800-1062 पर के आप कौन सी सिटी में जाके ऐसी रिटायरमेंट लेना चाहते हो. 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हेल्थ का तो ध्यान मैं रख रही हूँ यार आजकल काफी 10K स्टेप्स पूरे कर रही हूँ, प्रोटीन इंटेक पूरा कर रही हूँ, फाइबर सब ये सब सब का ध्यान रख लो, लेकिन जब तक फाइनेंशियल हेल्थ की बात आती है ना उसमें मेरी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है। लेकिन आई फाउंड वन मोर थिंग जिससे आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक रख सकते हो। बात हो रही है creditmarket.ae की। अगर आप क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फिर मॉर्गेज ढूंढ रहे हो, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू दिस वेबसाइट creditmarket.ae। देयर इज वन मोर वे अल्फ्रेड कैन एक्चुअली हेल्प यू। कॉल कर सकते हो आप 800 अल्फ्रेड पर या फिर आपको सिंपली विजिट करना है creditmarket.ae पर। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: विशाल दलानी का ट्रैक सॉन्ग का नाम था आई फील गुड। एंड हम भी यार बहुत अच्छा फील करते जब भी हमारी पुरानी कोई फोटोग्राफ्स हमें मिलती है बचपन की, स्कूल की। लेकिन दिस टाइम अगर आप अपने बच्चों की फोटो खींच रहे हो, ध्यान रखना।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ। एंड यूएई स्कूल्स आर टाइटनिंग प्राइवेसी रूल्स। क्या करना है, पेरेंट्स आर बीइंग आस्क्ड नॉट टू फोटोग्राफ और फिल्म ऑन कैंपस या फिर शेयर पिक्चर्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑनलाइन विदाउट कंसेंट। मेमोरीज बनाते बनाते हम कभी कभी स्टेज की फोटोज जो होती हैं जहाँ पे हमारा बच्चा यू नो परफॉर्म कर रहा है, हम बाकी बच्चों की भी फोटोज क्लिक कर लेते हैं। वेल फॉर दैट देर इज रिस्ट्रिक्शन दैट कवर्स क्लासरूम्स, कॉरिडोर्स, प्लेग्राउंड्स, असेंबलीज एंड पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ एरियाज। पेरेंट्स आर ऑल्सो बींग आस्क्ड नॉट टू शेयर इमेजेस और वीडियोज शोइंग अदर चिल्ड्रन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया या फिर अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अप्रोप्रिएट कंसेंट के बिना। सो दिस टाइम थिंक ट्वाइस बिफोर यू आर क्लिकिंग एट स्कूल। कहीं कहीं पर हो सकता है अलाउड हो, लेकिन यू नीड टू आस्क, यू नीड टू हैव द कंसेंट जिसकी भी आप फोटो खींच रहे हो, जहां पर भी खींच रहे हो, स्पेशली स्कूल प्रीमिसेस में। तो मेमोरीज बनाओ लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स और सेफ्टी के साथ बनाना। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: नेहा कक्कड़ की आवाज, सॉन्ग का नाम था गर्मी, जो फिलहाल बहुत हो रही है बिकॉज ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, और उसके साथ साथ जो बालों का हाल है यार।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 में मैं हूँ अवनि आपके साथ, एंड जैसे ही मैं इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलती हूँ, फोन चलाती हूँ, इंस्टा स्क्रॉल करती हूँ कि यार छोड़ो यार बालों की बात बाद में कर लेंगे, मैं थोड़ा ध्यान दे दूंगी अपने आप पे, ठीक हो जाएगा, वैसे ही उसी वक्त भाई ये गाना बज जाता है। हालांकि रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन छल रहे वाल से मैं झड़ रहे वाल ये मुझे याद आ जाते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ यार, क्या आपको ये गाना रोमांटिक लगता है या फिर मेरे जैसे ये झड़ रहे बाल सुनाई देता है? बताओ मुझे कॉल करके 800-1062। जानना चाहती हूँ मैं कि सिर्फ मेरा ही माइंड इतना फास्ट, इतना ऑपोजिट वे में चलता है कि आप मेरे साथ हो। 800-1062 इट इज, अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2। छल रहे वाल कमिंग अप योर वे, इट्स द ट्रेंडीएस्ट सॉन्ग ऑन इंस्टा राइट नाउ।

0: Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo!
3: टाइम इज लिटरली फ्लाइंग. व्हेन आई टॉक अबाउट दीज मूवीज मुझे लगता है वक्त जो है वो भाग रहा है बहुत तेजी से. ब्रेकअप सिड इंडीड इतनी कमाल मूवी थी ना. मतलब द रिलेशनशिप दैट ही शेयर्स विद हिज पेरेंट्स, द लव स्टोरी बिटवीन द टू ऑफ देम. एंड अयान मुखर्जी का डेब्यू था. कमर्शियल मूवी में पहली बार दिखाया गया था कि लड़की जो है वो बड़ी है, लड़का छोटा है.
4: एंड एक्टिंग.
3: सो व्हाट डू यू थिंक मिस्टर मायापुरी, अगर आयशा और सिड जो है इनकी शादी वादी हो गई है, अगर एक पार्ट टू आएगा तो क्या ये साथ होंगे?
4: नाउ
3: इफ आई सी सिड वॉज नॉट, ही वॉज वेरी एंटाइटल्ड, ही वॉज वेरी स्पॉइल्ड. हाँ नहीं डिफरेंट, चलो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बट सिड ने इतना स्ट्रगल देखा नहीं. आयशा मिल गई थी उसको खाना खिलाने वाली, घर पे रखने वाली, तो उसने रियलिटी नहीं देखी है जिंदगी की. थैंक यू सो मच सुरभि एंड मायापुरी जी, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है.
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ.
0: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: भाई आज वेदर ने धोखा दे दिया. लास्ट वीक में इतनी खुश थी कि वी हैव बीन विटनेसिंग मेजर डिफरेंस इन वेदर. बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं है, बढ़िया हवाएं चल रही है, लेकिन 35 डिग्रीज हो रहा है फिलहाल एंड 70% ह्यूमिडिटी. भाई क्या क्या करेंगे इस ह्यूमिडिटी का हम.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the 3 p.m. peak lunch hour time and खेलने वाली मैं आपके साथ खाओ पियो ऐश करो where you can actually win open movie tickets. Why? क्यों करना है भाई, खाओ पियो ऐश करो. कभी भी मेटाबॉलिज्म बदल सकता है यार आपका, जवानी के दिनों में, बचपन में, बुढ़ापे में तो चलो ठीक है, लेकिन ये मिड लाइफ क्राइसिस जो होते हैं ना, बता रही हूँ, इसमें सबसे ज्यादा काम जो है ना वो खाना ही आता है यार.
3: जाए जाए जाए जाए एक बार जो जाए जवान.
2: खाना ना चला जाए इसके लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हो 800-1062 पर. कॉल करो इस टोल फ्री नंबर पर, मैं खेलूंगी आपके साथ खाओ पियो ऐश करो विच इज अ रैपिड फायर गेम राउंड विद फूड डिशेस एंड जो भी सबसे ज्यादा तेज जवाब देगा वो जीतेगा आज की ओपन मूवी टिकट्स. 800-1062 इज द टोल फ्री नंबर. कॉल मी हियर अंटिल देन. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. मंडे ब्लूज को भगाते हुए भाई खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये कोई भी ब्लू हो खाना ठीक कर देता है. तो लेट्स सी कॉल कौन है आज कॉल पे खाओ पियाश के लिए. हेलो
2: हेलो, काफिया.
1: काफिया और साफिया?
2: काफिया.
1: काफिया यार बड़ा ही खूबसूरत नाम है. इसका मतलब क्या है?
2: इसका मतलब है सबके हेल्प करने वाला.
1: सबकी हेल्प करने वाला?
2: हाँ.
1: तो आप आज मेरी हेल्प करने वाले? आप मुझे आज लंच भेजने वाले?
2: मेरी हेल्प करने वाली
1: है आपनी? यस यस, अनडाउटेडली यस. एंड वी गोना स्टार्ट विद दैट. लेकिन आप करते क्या हो साफिया?
2: मैं टीचर हूँ.
1: आप टीचर हो? एंड ओके फाइन, आज वर्ल्ड टीचर्स डे है. हैप्पी टीचर्स डे फर्स्ट ऑफ ऑल.
2: थैंक यू सो मच.
1: आपको किसी और ने विश किया है?
2: मेरे सब स्टूडेंट्स
1: ने. सारे? अच्छा, सबको पता था. वेरी नाइस. ये इससे पता लगता है बहुत अच्छा टीच करते हो, वरना बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि आज वर्ल्ड टीचर्स डे है. आपको बताना है कि अगर आपको आज मंडे ब्लूज हटाने के लिए बढ़िया सा लंच करना हो तो आप दोनों में से कौन सी चूज करोगे? यू हैव टू बी रैपिड विद दिस. ऑलराइट
2: ऑलराइट.
1: व्हाट वुड यू चूज, क्रीमी पिंक सॉस पास्ता या फिर चीजी पनीर टिक्का रैप?
2: क्रीमी पिंक सॉस पास्ता
1: या व्हाइट सॉस पास्ता?
2: व्हाइट सॉस पास्ता.
1: व्हाइट सॉस पास्ता या चिली गार्लिक नूडल्स?
2: चिली गार्लिक नूडल्स.
1: चिली गार्लिक नूडल्स या मोमोज?
2: मोमोज.
1: मोमोज या राजमा चावल?
2: मोमोज.
1: मोमोज या छोले भटूरे?
2: मोमोज.
1: मोमोज या मसाला डोसा?
2: मसाला डोसा.
1: मसाला डोसा या पालक पनीर प्लस रोटी?
2: मसाला डोसा
1: या वो बिरयानी?
2: बिरयानी.
1: बिरयानी या शक्शुका?
2: बिरयानी.
1: बिरयानी में कौन सी बिरयानी? चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी?
2: चिकन बिरयानी.
1: चिकन बिरयानी. यार आप पहले हो जिसने चिकन मटन में से आप चिकन बिरयानी चूज कर लिया भाई. वरना जितने मेरे आज तक के कॉलर्स रहे मटन बिरयानी के ऊपर उनको डिश जाती ही नहीं है.
2: पर मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है. आई कैन ईट ऑल द टाइम. आप तीन टाइम दे, मैं तीनों टाइम खाऊंगी.
1: नहीं, आपने अभी क्या खाया पहले वो बताओ. लंच कर लिया आपने?
2: लंच मैंने वो खाया, क्या उसका नाम है, कीमा पराठा.
1: कीमा पराठा मतलब लंच कर चुके हो. लेकिन अब मुझे लगता है जितनी हमने बात कर ली है खाने की, ऊपर से मंडे चल रहा है तो अभी चिकन बिरयानी ऑर्डर होने वाली है.
2: बिल्कुल.
1: मैंने कहा था ये खेलने के बाद भूख लग जाती है. मुझे भी लग गई है यार.
2: मैं
1: भी दोनों इकट्ठे ऑर्डर करते हैं अलग अलग एड्रेस पर. थैंक यू सो मच. अगर आपको भी खेलनी है मेरे साथ खाओ पियो ऐश करो, ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर 0543091062. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:06।
2: Bollywood.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: अपनी लाइफ के प्लॉट ट्विस्ट खत्म नहीं हो रहे थे तो वेदर भी लाइक कि मैं इतना पीछे क्यों रहूं। लास्ट वीक इतना मेजर डिफरेंस था वेदर में एंड अब ह्यूमिडिटी लेवल 75% पे, 35 डिग्रीज आउट देयर, इट फील्स लाइक 50 ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and October में ना यार कहा जाता है कि या तो आप breakup से move on कर रहे हो तो या फिर आप October में ना प्यार में पड़ जाते हो. So this time of the year जहाँ पे आप अपना ना shift देखते हो. लेकिन there is one more shift, one plot twist that we didn't talk about. एडवेंचर वाला ट्विस्ट. दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं अक्टूबर में. ग्लोबल विलेज खुल रहा है वापस से. बहुत सारे हैलोवीन इवेंट्स, हैलोवीन पार्टीज होंगी इस अक्टूबर. नवरात्रे आ गए हैं तो इतना कुछ है यार अक्टूबर में करने के लिए. लेकिन आप अपनी लाइफ के प्लॉट ट्विस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो ना.
2: मुझको गलत तुझ में.
1: बता दो यार, ब्रेकअप हुआ है कि प्यार हुआ है? बता दो. बता के ना ठीक हो जाते हैं इंसान. 800-106 is the number. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मुझे गेड़ी का इतना शौक है ना ड्राइव पे जाने का. पंजाबी में उसको गेड़ी कहते हैं. नेट इट गॉट अ वाइब एंड इसीलिए मैं कभी कभी ड्राइव नहीं, मैं हमेशा ही गेड़ी कहती हूँ. लेकिन कोई मुझे बोलता है ना वाई वाई लाइक ऑलवेज हमेशा भूख लगी है गेड़ी पे जाओ, उदास हो गेड़ी पे जाओ, खुश हो तो भी गेड़ी पे जाओ, रील बनानी है तो भी. इंपॉर्टेंट है यार, वाइब के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है. नाउ यू कैन एक्चुअली लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटोर एंड स्कोडा विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1,999 दिरहम पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान. ऑल यू हैव टू डू इज विजिट selfdrive.ae. TNC अप्लाई ऑफ कोर्स. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: market.ae.
1: Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
1: ये सुनो।
3: जुल्फी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी टीचर्स डे आपको। हाउ डज अ टीचर फील ऑन टीचर्स डे? डू यू फील लाइक देयर इज अ हेलो ऑन योर हेड राइट नाउ? और कैसा लग रहा है इस वक्त?
4: सेम है, ऑल इट्स लाइक एवरी अदर डे, अनलेस कोई स्टूडेंट गिफ्ट ला के दे दे।
3: क्या चांसेस हैं आज के ऐसा हो, जुल्फी बताइए।
4: हाँ, कुछ ऐसा अच्छा गिफ्ट मिलना चाहिए, कोई तो स्टूडेंट अप्रिशिएट करे आज के दिन।
3: यूजुअली होता है ऐसा?
4: मजाक कर रहा हूँ कि इन अ स्कूल, यस, देयर इज ऑलवेज सेलिब्रेशन, दे ब्रिंग चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग फॉर टीचर्स।
3: आजकल कैसे होता है सेलिब्रेशन? बिकॉज यू नो, व्हेन आई वाज इन 11th ग्रेड, वी हैड टू ड्रेस अप एज टीचर्स एंड गो एंड टीच द प्राइमरी सेक्शंस। सो यू नो, लड़कियां साड़ी पहनती थी, हम लोग जो है ब्लेजर वेजर पहनने का हमको मौका मिलता था, तो जाके हम लोग ना फिर चौक मारते थे जाके। आजकल क्या होता है?
4: आजकल चौक होती नहीं है।
3: एग्जैक्टली,
4: आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मतलब इवन हार्डली वी यूज व्हाइट बोर्ड्स एज वेल, क्योंकि वो तो सब हमारे टीचरों के निशाने अच्छे थे।
3: नहीं नहीं, वो बच्चे मारते थे, फिर हम लोग रिप्लाई में मारते थे, जस्ट टू काइंड ऑफ सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट।
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: There's heavier traffic on E11 Sheikh Zayed Road around World Trade Center and Central Dubai. Uske saath saath E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road par aapko milega Mohisnawali side. E44 Hatta Road par aapko milega congestion. Uske saath Al Khawanij Road Mohisnawali side par bhi traffic build up ho raha hai. Kahin aur phansi ho, let me know, call karke 800-1062 par.
6: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1999 dirhams per month for a 12 month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
7: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं अवनी आपके साथ, जिसका फिलहाल हो रहा जाने का टाइम. पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम इंस्टा हैंडल, या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी आर के पेज पर, AVNIY AAA R. एंड रिसेंटली ना एक रील अपलोड करी है, इट्स कॉल्ड मंकी चैलेंज, जिसमें एक इंसान को सिर्फ एक्टिंग करनी है, बताना है वर्ड क्या है, दूसरे इंसान को सिर्फ बोलना है, जो देख नहीं रहा है इंसान उसको बताना है कि वो क्या वर्ड है. इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप जरा देख के बताओ. मंकी चैलेंज, हम में से कौन बदनाम हुआ है? सिड, मी एंड मानसी. गो वॉच दैट रील ऑन 106.2 बिग एफएम. बाकी मिलती हूँ कल आपको फिर से द बिग मिक्स 1 to 5. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is the Big Thrill. The only exciting and thrilling thing about Monday is going back home. But Monday ko traffic jo hai, wo aapke aur aapke ghar ke raaste ke beech aa jata hai. Shuruaat ho chuki hai 2 ghante ka traffic. It is already here. But to keep you company while you're heading back home, while you're stuck in traffic, we've got some fantastic plans for you to start with. जब आप गाड़ी में लंबे सफर पे रहते हैं या फिर ट्रैफिक में सफर करते हैं, हम यहाँ पे जाम करते हैं विद द कैरियोकी। तो अगर आप गाना गाने का शौक रखते हैं, डजंट मैटर गाना आए या ना आए, इफ यू एंजॉय सिंगिंग, वी विल स्टार्ट द कैरियोकी इन जस्ट अ बिट। फिलहाल किक स्टार्टिंग मंडे की शाम विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:05।
2: Bollywood.

0: Chase Banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800-ALFRED. Alfred simplifies money.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Good evening, यह Big Thrill and Mansi. While you're heading back home, आप ट्रैफिक में जाम में फंसे होते हैं. हम यहाँ पे जाम करते हैं with the karaoke.
1: Karaoke.
2: गाना याना आए, अगर आपको गाने का शौक है तो बस आवाज आपकी, ऑडियंस मेरी. टाइम टू होस्ट योर ओन कॉन्सर्ट व्हाइल यू आर स्टक ऑन शेख ज़ायद एट द मोमेंट. आज का गाना अगेन इज अ 90s वाला गाना एंड थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड माय एल्गोरिथम. पूरे वीकेंड मैंने सिर्फ एक ही बंदे की रील देखी है जिसने कहा है आमिर खान का बेटा, जिनका एल्गोरिथम मेरे जैसा है वो समझ गए होंगे. तो ये आमिर खान का ही गाना है

0: आमिर खान, जूही चावला, ब्रिलियंट एल्बम एक गाना इवन आफ्टर इयर्स इस गाने का आज भी बहुत पॉपुलर है। बट अगर आपको ये गाना याद आ गया है देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल। वी आर कैरियोकिंग मंडे की शाम मन लगाने के लिए राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल।
1: कैरियोकी

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: मंडे की शाम ट्रैफिक में मन लगाने के लिए भी आकार यू किंग गाना आना है। अगर आपको गाने का शौक है देन दिस इज इट। आ चुकी हैं कोमल। हाय कोमल।
2: हाय,
1: हाउ आर यू?
2: ड्राइविंग बैक।
1: आई हाय, एक तो मंडे ऊपर से ड्राइव बैक, कहाँ से कहाँ तक?
2: हाय
1: कोमल। वैसे पता मेरी बॉस का नाम भी कोमल है।
2: ओके,
1: शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी नाइस।
2: नाइस टू नो दैट।
1: She's also listening to me right now. तो मैं तीन बार बोलूंगी, She's very sweet, She's very nice. फिलहाल आप क्या करती हैं कोमल?
2: मैं डॉक्टर हूँ।
1: अरे वाह, खुश नहीं लग रही हैं आप? डॉक्टर हैं तो अच्छी बात है, काफी पढ़ाई की होगी आपने।
2: थोड़ा बिजी डे था।
1: किस चीज की डॉक्टर हैं कोमल आप?
2: मैं बायोप्सीज देखती हूँ।
1: डू यू एंजॉय सिंगिंग?
2: यस यस, आई लव सिंगिंग।
1: आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे फॉर डॉक्टर्स टू अनवाइंड,
2: है ना? Definitely,
1: तो ये आपने पेशेंट्स को गाना गा के ठीक कर देती हो कि इलाज भी करना पड़ता है? आवाज इतनी अच्छी है आपकी तो मतलब आवाज से ही लोगों का मर्ज ठीक हो जाता होगा। फिलहाल कोमल आपने गाना पहचान लिया है?
2: Yes.
1: तो आप कोमल की मधुर आवाज में सुनेंगे आज शाम।
0: कारियोकी
1: हां जी।
2: गजब का है दिल, देखो जरा ये दीवानापन, सोचो जरा तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से।
1: आय हाय, बड़ा अच्छा गाया यार, एकदम मतलब सुर आपके सही बैठे हुए हैं।
2: थैंक यू जी।
1: ये MBBS करते करते गाने कहाँ से याद रह गए आपको? क्योंकि मैंने सुना है बहुत पढ़ाई होती है।
2: दिस वाज माय रिक्रिएशन फॉर स्टडीज।
1: ओ सो यू वर लिसनिंग टू कयामत से कयामत तक व्हाइल यू वर स्टडीइंग?
2: यस यस,
1: वेरी नाइस।
2: दैट टाइम ना आमिर खान एंड जूही वाज सच अ हिट कपल ऑन द स्क्रीन।
1: ब्रिलियंट ब्रिलियंट। पर आपने बड़ा अच्छा गाया कोमल। मैं कह रही हूँ कि आधे लोग तो दवाई की जरूरत ही नहीं है, आप बस गाना गा दिया करो उनके लिए।
2: Sure, मानती।
1: सच्ची बोल रही हूँ मैं। Sound therapy, but you sang beautifully. Thank you so much for singing this lovely song for us, Dr. Komal. You have a great drive back home.
2: Thank you.
1: Bye.
2: Everyone, smile and happy,
1: Mansi. Bye. You too. Bye. Yeah, yeah. Karaoke Monday ko man lagane ke liye. Agar aap traffic mein atke hue ho, give me a call 800-1062 par.
0: Karaoke. 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं। आ

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू।

5:39 Monday ki sham, while you're heading back home, while you're stuck in the jam, we are karaokeing here. Also Asham, aapka phone जो वॉलपेपर आपने लगाया हुआ है ना, वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहता है. दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च थैंक्स टू माय चैट जीपीटी, कि आपके फोन का स्क्रीन सेवर एंड वॉलपेपर आपके बारे में क्या बताता है. Coming up in just a bit, keeping you company here until 9. मैं हूं मानसी, दिस इज द बिग थ्रिल.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: For the very first time in Dubai, join Darshan Chopra for an intimate Zikr night. A quiet sanctuary where old Bollywood melodies, timeless nostalgia and stories drift gently into the evening. Zikr, where music becomes a memory we share. Saturday, 10th October at the Junction, Al Sarkal Avenue. Book your seats now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
4: एक घंटा 55 मिनट का डिले उनसे एग्जैक्ट मंडे की शाम मुबारक हो. हैवी ट्रैफिक है. दिस ट्रैफिक विच इज काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल एट द मोमेंट. मोरिफ टू मुहेस नाइफ टेकिंग द शेख मोहम्मद बिन जायद. ऑल्सो स्लो मूविंग ट्रैफिक आपको मिलने वाला है डिस्कवरी गार्डन से फुरजान. हैवी ट्रैफिक ऑन द हेस स्ट्रीट, जेवीसी, जेवीटी, स्पोर्ट सिटी ऑल द वे टूवर्ड्स मोटर सिटी एंड दूसरी तरफ प्रोडक्शन सिटी की साइड भी स्लो मूविंग ट्रैफिक है. इसके अलावा ट्रैफिक अ बिट पैची फ्रॉम मरीना टू जेबीआर. दो हैवी ट्रैफिक इस वक्त मीडिया सिटी से जेएलटी तक. एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताएं 800-1062 पर.
2: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
5: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
6: नहीं, ये तो मुफ्त है.
5: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास. चलो फोन लगाओ.
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: मंडे को हमारे ऑफिस में हर बंदा अपने टिफिन में सांबर लाता है और मंडे को यूजुअली हर दूसरा कैरियोके कॉलर फीमेल होता है. सो वी've गॉट अनदर फीमेल इन द हाउस कैरियोकिंग. सुम्या, हाय, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू?
1: गुड गुड गुड. मंडे को आपके ऑफिस में भी लोग लंच में सांबर लेकर आते हैं? आई डोंट नो, देयर इज समथिंग अबाउट मंडेज एंड सांबर हमारे ऑफिस में.
2: May I don't go to office. I have my own business.
1: Very nice, boss lady. So you decide when to go, when not to go. Love it, love it, love it. So how was your Monday?
2: Good, good, going good. Just stuck in traffic.
1: Are you one of those bosses जो अपने employees को pressure देता है या फिर you just are the chill one?
2: नहीं,
1: सारा पैसे मैं अपने सर ले लेती हूँ. हर बॉस ऐसा ही सोचता है सौम्या, हर बॉस ऐसा ही सोचता है बट करता नहीं है. फिलहाल व्हाइल यू स्टक इन ट्रैफिक हम आपकी आवाज में सुनेंगे ये गाना फ्रॉम कयामत से कयामत तक.
0: कारियोकी

0: हम भी अकेले तुम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से कसम से।
1: वेरी नाइस। कभी ऐसे जंगलों में पेड़ों के पीछे किसी के साथ ये गाना गाया है?
0: नहीं, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, अगर गाऊंगी तो भाग जाएंगे।
1: ये नहीं सोचा कि मैं जंगल में क्यों जाऊंगी। शी सिंग कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है इसलिए मैंने नहीं गाया। बट यू सैंग ब्यूटीफुली। आपके एम्प्लॉइज को पता है कि उनकी बॉस कितना अच्छा गाती हैं कि वो सिर्फ डांट ही खाते हैं? हाँ मैं समझ गई। अगर सुन रहा है कोई एम्प्लॉई सौम्या का तो भाई अगली बार मैडम जो है गुस्सा हो तो बोलना कि प्लीज आप एक गाना सुनाओ यार, अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू सौम्या, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग एंड एंटरटेनिंग अस। बाय बाय। यही है कारियोकी। दिस इज हाउ वी जैम व्हाइल यू आर इन द जैम। अगर आप भी गाना चाहते हैं 800-1062 इज द नंबर टू डायल।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, मैं हूँ Mansi. We're playing the 5-second rule. फिलहाल फोन लाइंस पर निखिल. Hi, good evening.
2: Hi.
1: How are you, Nikhil? कैसा रहा so far Monday आपका?
2: Traffic में फंसे हुए हैं.
1: हाँ, मैंने सुना है कुछ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया. आई एम सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ जेंजीज, तो मोस्ट ऑफ देम वर इन अ वेरी डिफरेंट मूड टुडे. तो मैंने बोला हुआ क्या है, इट्स अ मंडे, दैट्स व्हाई ही सेड नो नो नो, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो मेरे फीलिंग्स अलाइन नहीं हो रहे हैं. आर यू अ जेंजी
2: और मिलेनियल? I'm millennial,
1: not Gen Z. Millennial. 93. 93 na, to I'm millennial. Don't worry. Your emotions are not dependent on the Mercury.
2: On the safer side.
1: No, I love Gen Zs. I can't hear anything against them. Nikhil, kya karte hain aap?
2: I work for Flight Dubai.
1: Are you a pilot?
2: No, I'm not.
1: Achha, mere accent badal gaya seedha. मेरे को लगा पायलट ने कॉल
2: किया.
1: तो आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ द टीम. वेरी वेरी नाइस. आई लव योर एयरलाइन.
2: या आई एम पार्ट ऑफ द ग्राउंड ऑपरेशंस.
1: या आई लव योर एयरलाइंस बाय द वे. बड़ी अच्छी है फॉर अ बजट एयरलाइन. फिलहाल हम खेलेंगे 5-second रूल. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट.
0: 5 सेकंड रूल.
1: तीन खान्स ऑफ बॉलीवुड.
2: सलमान, शाहरुख, आमिर.
1: वेरी नाइस. 3 सेकंड के अंदर. तीन ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ ओनली एयरपोर्ट पे मिलती हैं या दिखती हैं.
2: बैगेज बेल्ट, चेक इन काउंटर्स एंड इमिग्रेशन काउंटर्स.
1: वेरी वेरी गुड. तीन ऐसी चीजें दैट आर व्हाइट इन कलर एंड आप इन्हें खा भी सकते हैं, सफेद रंग की होती हैं.
2: रसगुल्ला, संदेश,
1: संदेश,
2: पनीर.
1: माइंड ब्लोइंग आ निखिल, यू आर लिटरली फ्लाइंग, प्लेइंग रियली वेल. तीन ऐसी चीजें जो आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को कभी नहीं बता सकते हैं या बताएंगे. यहाँ फंसे.
2: व्हाट आई डू विद माय बॉयफ्रेंड, व्हाट आई डू विद माय फ्रेंड्स, माय डार्केस्ट सीक्रेट अबाउट माय एक्स.
1: So you guys also have secrets. Because girls say, "Arey, we don't have any secrets. We're like an open book." But whatever
2: everyone
1: happens,
2: does. Yeah,
1: whatever happens in the boys' trip, I think it is as mysterious and as controversial
2: exactly,
1: as a girls' trip. Girls' trip में भी बहुत कारनामे होते हैं. All right, quickly tell me 3 गाने जिनमें दिल आता है.
2: दिल तो पागल है. दिल.
1: दिल.
2: हम दिल चुके का नाम.
1: अरे अरे अरे अरे.
2: ये दिल.
1: टाइम खत्म हो गया. बट आप अच्छा खेल रहे हो आप अभी.
2: बट ये दिल दीवाना तो मैं बोल चुका था लास्ट में. नहीं दीवाना नहीं का, दिल तो हो गया था.
1: अरे अरे अरे. ये क्लास के उन बच्चों में से है कि मेरा 0.5 मार्क भी क्यों काटा, 99.5 क्यों आए. कमाल खेला है निखिल आपने. मतलब सारे जवाब आपने बैंग ऑन टाइम पे दिए. 3 इमरान हाशमी की मूवीज.
2: जन्नत, जन्नत 2 और
1: मर्डर. मर्डर वो लम्हे वो बातें. अरे कैसे बोल सकते हो, 93 बॉर्न हो आप. आशिक बनाया आपने इन्हें, हम सबको बड़ा किया है. माइंड ब्लोइंग निखिल, कमाल खेला है. मोस्ट ऑफ योर आंसर्स वर बैंग ऑन विद इन 5 सेकंड्स. सो आई थिंक द किंग ऑफ 5 सेकंड रूल आज मंडे की शाम इज निखिल. निखिल कैसे लग रहा है आपको ये खिताब आपको दिया है मैंने? अच्छा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है.
1: बहुत मजा आया निखिल आपसे बात करके. एंड हैव अ सेफ ड्राइव बैक होम. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
2: थैंक यू.
1: बाय. And gee, this is how you play the 5-second rule. अगर आपको गाड़ी में बैठे बैठे लग रहा है that you can do better than Nikhil, which I highly doubt, give me a call on 800-1062.
0: Big. Big. 106.2.

0: morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's, Jetour UAE, part of Elite Group Holding, and Zulekha Hospital.
1: Insurance, insurancemarket.ae. Banking, creditmarket.ae. Travel, holidaymarket.ae. Get it sorted online or call 800 Alfred 24/7.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com. Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
0: ये सुनो।
3: जुल्फी, good morning, happy Teachers Day आपको। How does a teacher feel on Teachers Day? Do you feel like there's a halo on your head right now? और कैसा लग रहा है इस वक्त?
4: Same है, all it's like every other day, unless कोई स्टूडेंट गिफ्ट लाके दे दे।
3: क्या चांसेस हैं आज के ऐसा हो, जुल्फी बताइए।
4: हाँ, कुछ ऐसा अच्छा गिफ्ट मिलना चाहिए, कोई तो स्टूडेंट अप्रिशिएट करे आज के दिन।
3: नहीं, यूजुअली होता है ऐसा।
4: मजाक कर रहा हूँ, there's always celebrations, they bring chocolates and everything for teachers.
3: आजकल कैसे होता है celebration? Because you know, when I was in 11th grade, we had to dress up as teachers and go and teach the primary sections. So you know, लड़कियां साड़ी पहनती थी, हम लोग जो है ब्लेजर वेजर पहनने का हमको मौका मिलता था, तो जाके हम लोग ना फिर चौक मारते थे आजकल क्या होता है?
4: आजकल चौक होती नहीं
3: है exactly.
4: आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मतलब इवन हार्डली वी यूज व्हाइट बोर्ड एज वेल, क्योंकि वो तो सब हमारे टीचरों के निशाने अच्छे थे।
3: नहीं नहीं, वो बच्चे मारते थे, फिर हम लोग रिप्लाई में मारते थे, जस्ट टू काइंड ऑफ सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 34 डिग्रीज है बट फील्स लाइक 45 बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी जो आज काफी है, फिलहाल 76% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: Live.ae पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
1: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: पगला दूंगा पूरे देश को.
1: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: Monday ki sham, we playing the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I give you a few categories. Teen cheeze batani hoti hai 5 second ke andar. Joining us is Mr. Anoop. Hi, good evening.
4: Good evening, ma'am. Good evening. Kaise hai?
3: Main theek hu, sir. Aap kaise ho?
4: Main badhiya, bahut badhiya.
3: घर पहुंच गए हो कि ट्रैफिक में अटके हो?
4: नहीं, मैं ऑफिस से निकल गया, गाड़ी ऑन किया तो रेडियो ऑन हो गया, बस ये आ गया, मैंने कॉल बैक किया.
3: हाउ स्वीट अनूप, कैसा रहा वीकेंड?
4: बहुत बढ़िया था.
3: क्या किया आपने? खरीदा प्याज टमाटर वगैरह वीकेंड पे?
4: हाँ जी, बहुत ही महंगा हो गया सब कुछ, बट फिर भी करना है, पेट्रोल भी डालना है, बहुत ही महंगा हो गया सब कुछ.
3: बॉडी में भी पेट्रोल डालना महंगा पड़ रहा है और गाड़ी में भी.
4: बिल्कुल.
3: फिलहाल आपके फोन पर किसका वॉलपेपर है? मेरा चैट जीपीटी बताएगा आपके फोन का वॉलपेपर आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बोलता है.
4: मेरा वॉलपेपर में है मैं, मेरा वाइफ और मेरा किड.
3: वेरी नाइस. मतलब कि आपकी बीवी लड़ती है आपसे काफी है?
4: मुझे अभी घर जाना है.
3: मैं समझ गई, मेरा चैट जीपीटी झूठ नहीं बोलता है ना. अगर आप काफी देर बाथरूम में रहते हैं तो वो गुस्सा भी हो जाती होगी फोन लेके अगर जाते हो तो.
4: वो तो सब करते हैं.
3: अंतर्यामी है मेरा चैट जीपीटी, अंतर्यामी. फिलहाल विल प्ले दिस फन गेम. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट अनूप.
1: 5 second रूल.
5: ओह यस.
3: नेम 3 things दैट आर येलो इन कलर.
4: बनाना
3: और थिंग्स. ऑरेंज इज येलो इन कलर. बहुत बढ़िया अनूप साहब, तालियां मेरी तरफ से. ऑरेंज इज येलो इन कलर. वेरी नाइस. 3 things.
4: ऑरेंज के अंदर के पार्ट
3: भी सर ऑरेंज ही होते हैं, वो येलो नहीं होते हैं. आप कहाँ से ये बासी सामान खरीद रहे हो? अरे. 3 आमिर खान की मूवीज.
4: लगन
3: और
4: रंग दे पसंद
3: थी. और टाइम खत्म.
4: लाल सिंह चड्ढा.
3: 5 सेकंड के अंदर बोलना, फटाफट खेलने वाला गेम है. 3 गाने जिनमें आता है इश्क.
4: हार गया.
3: अरे आमिर खान का ही गाना है, इश्क हुआ कैसे हुआ. बहुत सारे यार, इश्क बिना क्या जीना यार, ये इश्क इश्क है. फटाफट. 3 चीजें जो दूध से बना सकते हैं.
4: पनीर
3: और
4: चाय, कॉफी.
3: वेरी नाइस. देखो एक जवाब दे दिया आपने. 3 ऐसी चीजें जो आप करते हैं जिससे बीवी बहुत गुस्सा होती है आप पे.
4: मोबाइल टॉयलेट में लेके जाना, लंबी बात करना, ज्यादा वीकेंड का काम करना.
3: लंबी बातें करते किससे हो बाथरूम में जाके?
4: बाथरूम में नहीं, मोबाइल. बाथरूम में जाके स्क्रॉलिंग करता हूँ.
3: हाँ, तो लंबी बातें किससे कर रहे हो आजकल?
4: घर वालों के साथ, इंडिया में वगैरह.
3: ओ, घर वाले ही है ना, कोई बाहर वाला तो नहीं है ना.
1: 5 second.
3: अनूप जी, मैंने कहा ना ये गेम बहुत इजी साउंड करता है बट थोड़ा सा टफ है खेलने में.
4: बिल्कुल
3: है ना. मजा आया कि नहीं आपको?
4: बिल्कुल मजा आया.
3: Thank you so much. You have a great drive back home and thank you so much for that.
4: Sure. You too. Have a great day.
3: Bye. Yeah, 5 second rule. Agar aap bhi try karna chahte ho, give me a call 800-1062 par.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 7:12।
2: Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: मंडे के दिन गुड न्यूज है आपके लिए. यू कैन नाउ लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटोर एंड स्कोडा विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 1,999 दिरहम्स पर मंथ. दिस इज फॉर अ 12 मंथ प्लान. आज ही विजिट कीजिए selfdrive.ae. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इस दुनिया में खाली बर्तन धोने के लिए और कस्टमर केयर वालों से झगड़ा करने के लिए पैदा हुई हूँ।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
2: See, people who cook food at home and if they have no help, बंदा खाना एक के लिए बनाए या चार के लिए, बर्तन उतने ही निकलते हैं। जब से मैं किचन में काम करने लगी हूँ ना, तब से मुझे समझ में आया कि मम्मी किचन से बाहर निकल के इतना गुस्सा क्यों करती थी। खाना बनाना आसान है, उसके बाद जो बर्तन धोने पड़ते हैं ना, वो इजी नहीं है। और कस्टमर सर्विस से तो पूछो ही नहीं, मुझे लगता है कोई बैर है मेरा पिछले जन्म का। एवरी सिंगल मंथ देर इज अ फाइट विद सम काइंड ऑफ कस्टमर केयर रेप। I don't know, कुछ तो है कलेश हमारे बीच में। फिलहाल हम बात करेंगे वीकेंड की। मंडे है, हम बात करेंगे सैटरडे की। समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग हैपनिंग, जिक्र आपके लिए लेकर आए हैं। दर्शन चोपड़ा लाइव, ही इज कमिंग एंड परफॉर्मिंग हियर इन दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इफ यू एंजॉय महफिल्स, यू एंजॉय ओल्ड मेलोडीज एंड सोलफुल म्यूजिक, दिस इज वेयर यू नीड टू बी। यू कैन बुक योर टिकट्स platinumlist.net पे, या फिर टिकट जीतने का मौका यहाँ भी आपको मिल रहा है। आपने सिंपली गेस करना है, ये जो गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में, गाना है कौन सा। ऐसे ही कई कमाल गाने दर्शन गाने वाले हैं दिस सैटरडे। इफ यू वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सैटरडे इवनिंग फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया, देन मुझे बताओ ये गाना अगर याद आ गया 800-1062 पर। गाने से याद आया, आजकल मेरी फीड, आपकी फीड, हम सबकी फीड पे सिर्फ यही गाना चल रहा है।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill. I'm Mansi. I'm sure we've all had a long Monday. And sometimes after a long week, you just want to sit back without any shor and sharaba and let great music speak to you, right? Is Saturday yahi hone wala hai, 10th of October ko. Step into an intimate evening of timeless Bollywood nostalgia with Darshan Chopra. He's coming to Dubai and performing for the very first time live at Zikrit. This is happening at the Junction. Evening full of soul stories and unforgettable melodies. Darshan Chopra, he is fantastic. From Sufi music to Bollywood classics. बस माहौल कुछ ऐसा होगा, टिकट्स फटाफट बुक करनी है platinumlist.net से. And we'll have a lot of fun. These are mehfils that I thoroughly enjoy. The event is made large by us, Big 106.2. That means yahan bhi every single evening your chance to win couple invites, just like Mr. Prashant. Aap enjoy karte hain mehfile, music, slow evening?
2: Usually thoda sa meri choice thodi si purane songs ki tarah zyada rehti hai.
1: To aapko to bahut maza aane wala hai.
2: मजा आने वाला है डेफिनेटली. एंड इनफैक्ट आई वाज एंजॉयिंग अभी इसके पहले जो सासों की माला चल रहा था, आई वाज रियली एंजॉयिंग इट.
1: है मतलब आपके दिल में भी है कोई सूफी शायर बैठा हुआ?
2: यस, मतलब आई डोंट नो द नेम्स बट आई एंजॉय द सॉन्ग.
1: सुपर्ब. सो यू आर ऑल सेट फॉर अ ब्यूटीफुल स्लो सैटरडे इवनिंग व्हिच इज फुल ऑफ सोल मैजिक एंड मेलोडीज. मैंने यहाँ जो आपको गाना सुनाया था प्रशांत जी, वो कौन सा गाना था?
2: The song was हम तेरे बिन कभी जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा.
1: बिल्कुल सही, आपने गाया नहीं, आपने रिसाइट करा है पोएट्री की तरह, बट कोई बात नहीं, गाएंगे दर्शन चोपड़ा. Saturday को congratulations, couple invites all yours.
2: Thank
1: I'll
2: you.
1: See you at the Junction. This is at the Al Sirkal Avenue. Zikra आपके लिए लेकर आ रहे हैं दर्शन चोपड़ा live for the very first time. तो बहुत मजा आने वाला है.
2: Thank you so much.
1: Have a great evening, Prashant. See you. Bye.
2: Thanks, Mandy. Bye. Bye.

0: Week. आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। हेलो,
1: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना। हेलो, सुन रहे हो ना?
2: हे

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, ये है Big Thrill Mansi and of course I am a homebody. मतलब weekend पे मुझे सिर्फ घर पे रहना अच्छा लगता है और आजकल नया शौक है I go and pick groceries. But I am into cooking and I'm usually not a fan of these experimental Instagram viral dishes. चाहे वो लोटस बिस्कॉफ चीज केक हो, मैंने वो ट्राई नहीं किया था बिकॉज आई लॉट ऑफ शुगर. एंड ऑफकोर्स उसके बाद एक और चीज़ बड़ी वायरल हुई थी, इट वॉज कोक जीरो में दूध डाल के. अब कोक जीरो मुझे बहुत पसंद है, दूध भी मुझे पसंद है, बट पता नहीं क्यों मेरा गट मुझे अलाउ नहीं कर रहा था ये करने का. बट एक और ऐसी बड़ी वायरल चीज़ है जो मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, ये मैंने ट्राई करी है इस वीकेंड पे एंड इट इज़ माइंड ब्लोइंग. ओ माय गॉड, मज़ा आ जाएगा. बड़ी लेट हुई है ये वायरल, अगर ये पीक गर्मियों में वायरल होती ना, मैं कह रही हूँ कि मैं इसका बिजनेस खोल दी, क्योंकि इससे ज़्यादा रिफ्रेशिंग चीज़ I don't think so I've had in a while. बताती हूँ मैं ये क्या है. फिलहाल किक स्टारिंग दिस आर विद

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Good evening, यह बिग थ्रिल, मैं हूँ मानसी एंड आई एम श्योर यू नो बाय नाउ आई एम इन माय कुकिंग एरा। आजकल मैं वैसी बातें करती हूँ, अरे बाहर से क्यों खाना, ये तो हम घर पे बना लेंगे। एंड माय इंस्टाग्राम फीड इज फुल ऑफ कुकिंग वीडियोस एंड आल्सो वायरल ट्रेंड्स। तो बहुत सारे वायरल ट्रेंड्स आते हैं बट आई डोंट रियली ट्राई मोस्ट ऑफ देम क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रिस्की है। बट this viral trend is something that I would really recommend you to try and I am very sad ki ye ab aaya hai jab mausam thoda badal raha hai। It's still hot but peak heat mein ye itna mazedar lagega na। So what you do is you scoop out a cucumber, it's called the viral spicy cucumber, kind of chaat bhi bol sakte hai ise। To ha, you'll scoop out a khira, a cucumber, and jo bhi scoop karke niklega andar ka masala, अंदर का सामान, उसे फेंकना नहीं है। यू हैव टू मिक्स दैट विद इमली, विद चाट मसाला, विद अ लिटल शुगर, नींबू, काला नमक। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैंने ये खाया था, ओ हो हो हो, मज़ा आ जाता है। इफ यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू अवॉइड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड चाट वाली क्रेविंग हो रही है ना, मज़ा आ जाएगा। तो हाँ, बस ये सब आपने मिक्स करना है, एक कंकॉक्शन सा बनाना है एंड देन यू हैव टू फिल इट अगेन इन दैट scooped out cucumber, oh my god, and also just add a little red spices like chilies and some kala namak, chaat masala, rim par bhi, and trust me, you will thank me later। Itna mazedar hai ye, matlab phir se mere muh mein pani aa raha hai। Agar aapko lag raha hai ki nahi nahi bahut khatta hoga, nahi, ye perfect combination hai of khatta, meetha, teekha, girls you love this।

0: देखो, एक कचौड़ी, दो समोसा, विक्की कौशल जैसा मर्द हो तो 100% कर सकते हैं भरोसा।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: ग्रीनेस्ट ऑफ द ग्रीन फ्लैग, पूरा बगान है ये हरियाली का। फिलहाल एक और चीज है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, दैट इज द डील्स दैट आई गेट फॉर यू। इट्स अ ब्रांड न्यू टर्म, इट्स टाइम फॉर अ ब्रांड न्यू जेटोर। यू कैन ड्राइव होम योर ड्रीम एसयूवी विद जेटोर्स लेटेस्ट अनबीटेबल ऑफर्स। What on them or 0% interest, plus you get a free service package and you enjoy up to a 1,000,000 kilometer warranty. EMI starting from just 966 dirhams per month. So aapki dream SUV could be closer than you think. Aaj hi visit kijiye Jator showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Alain and Fujairah. Jator UAE, part of the Elite Group Holding. Terms and conditions apply.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ।
3: टाइम इज लिटरली फ्लाइंग। व्हेन आई टॉक अबाउट दीज मूवीज, मुझे लगता है वक्त जो है वो भाग रहा है बहुत तेजी से। वेक अप सिड इंडीड, इतनी कमाल मूवी थी ना। मतलब द रिलेशनशिप दैट ही शेयर्स विद हिज पेरेंट्स, द लव स्टोरी बिटवीन द टू ऑफ देम, एंड अयान मुखर्जी का डेब्यू था कमर्शियल मूवी में। पहली बार दिखाया गया था कि लड़की जो है वो बड़ी है, लड़का छोटा है।
4: And the acting.
3: So what do you think, Mr. Mayapuri, अगर आयशा और सिड जो है इनकी शादी वादी हो गई है, अगर एक पार्ट टू आएगा तो क्या ये साथ होंगे? Now if I see, Sid was not, he was very entitled, he was very spoiled.
4: They were very different personality, I think.
3: हाँ, नहीं different, चलो opposites attract, but Sid ने इतना struggle देखा नहीं। आयशा मिल गई थी उसको खाना खिलाने वाली, घर पे रखने वाली, तो उसने reality नहीं देखी है जिंदगी की। Thank you so much Surbhi and Mayapuri ji, have a great evening, bye.
0: Keep your evenings electric, 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Chill. Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।